0: FM, Dunedin Voices, Dunedin Stories.
1: Assalamualaikum and kia ora.
2: Welcome to Indus to Otago on OAR FM.
1: Brought to you by the Pakistani Cultural and Wellbeing Society.
2: Welcome back to our show. Ehtisham, kaise hain aap?
1: Alhamdulillah, Zarnab, aap sunaye, aap kaise hain?
2: Ji, main bilkul theek thaak. Sunaye, kaise chal raha hai, sab theek thaak hai?
1: Sab theek, Zarnab, aap bataye, kaisa raha phir last show?
2: Oh, zabardast, bahut acha tha. To aaj ke show ke bare mein hum thoda sa overview le lein ki aaj hum kis bare mein baat karenge. Ye mainly hoga Muharram se related. Uske baad hamara ek festival chal raha hai Pakistan mein, Polo Festival Shandur mein, usse related hoga, monsoon se related hoga, aapko pata hai aajkal Pakistan mein monsoon ka, aur uske baad ek break hogi jisme hum aapko ek acha sa song sunayenge, aur last pe hum karenge thoda sa cricket se related cover karenge. To Ehtisham, mujhe zara thoda sa bataye Muharram ke month se related.
1: Zarnab, जैसा कि आप जानते हैं कि मुहर्रम का मंथ सिर्फ एक मंथ ही नहीं है मुसलमानों के लिए, खासकर हमारे लिए
2: जी.
1: ये हमें बहुत कुछ सिखाता है. इसका अगर हम बैकग्राउंड देखें तो ये हमें भूख प्यास एक ऐसा टॉपिक भी हमें बताता है कि जिसके साथ हमने किसी भी हाल में रहना है. जैसा कि हज़रत हुसैन अलैहिस्सलाम ने जो
2: जी.
1: हमें बताया कि अगर आपके ऊपर जितनी भी सख्तियां कोई भी कर ले तो आपने हक का रास्ता नहीं छोड़ना
2: जी.
1: और दूसरी बात यह है कि किसी भी हाल में अल्लाह का जिक्र नहीं छोड़ना. उस गर्मी में, उस भूख में, उस प्यास में, उस प्यास की शिद्दत में, उस जुल्म के इंतहा पे भी उन्होंने अपनी नमाज को नहीं छोड़ा
2: जी. बिल्कुल. और
1: नमाज पढ़ते पढ़ते उनकी शहादत
2: जी. बिल्कुल. तो एक्चुअली यही चीज़ है ना, अगर आप देखें हुसैनियत और यजीदियत के बारे में, अगर हम डिफरेंस, वो यही तो डिफरेंस है. मतलब यजीद एक आपको पता है बुजदिल इंसान था, उसने सारे कूफे वालों को अपने साथ मिला लिया था. और
1: जैसा कि आप जानते हैं जनाब के, हालांकि उस टाइम पे जो देख, अगर बैकग्राउंड को हम और डिटेल में जाएं तो हम ये देखेंगे कि यार जो कूफे वाले हैं उन्होंने बार बार खतूत भेज के ही आप हज़रत हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु को बुलाया कि आप आएँ और हम आपके साथ बैत करते हैं, हम आपके पीछे मतलब बैत करते हैं
2: जी.
1: लेकिन वहाँ आने के बाद जिस टाइम पे करबला में वो पहुँचे तो उस टाइम पे आके जो वहाँ के कूफे के लोग थे उन्होंने दगाबाजी की
2: जी. बिल्कुल.
1: और उन्होंने वो उनकी दगाबाजी इस शिद्दत अख्तियार कर गई थी इस हद तक कि उन्होंने जो उनके कैंप लगाए हुए थे उन कैंप को भी जला दिया कि उनके अंदर, क्योंकि वो प्रूफ थे, उन जो खतूत थे वो हज़रत हुसैन तो अपने साथ लेके आए हुए थे
2: जी.
1: तो उन्होंने अपनी उस जुल्म की बर्बरियत को इतना इस हद तक ले गए थे कि उन्होंने वो कैंप जला दिए. और हालांकि बच्चे भी थे उनके साथ, कितने लोग शहीद हुए
2: जी. जी.
1: तो
2: इससे हमें क्या सीखने को मिलता है
1: जनाब? इससे हमें ये सीखने को मिलता है कि यार अगर आपके ऊपर कितना भी

0: कलम कर दिया जाए,
1: जी
0: लेकिन जो एक ज़ात है जो हम सब के लिए है और सबसे ऊपर है, सबसे बालातर है, वो अल्लाह की ज़ात है बेशक।
1: जी
0: तो वो
1: जी
0: हमें ये सिखाती है कि जो वहाँ वो करबला की स्टोरी हमें ये बताती है कि आप कुछ भी कर लो, कुछ भी कर लो, लेकिन जो हक़ का रास्ता है वो ना छोड़ो।
1: जी बिल्कुल। तो इससे रिलेटेड, इस मंथ से रिलेटेड आजकल पाकिस्तान में आपको पता है कि मुहर्रम ही चल रहा है,
0: जी बिल्कुल
1: तो जुलूस न्याज वगैरह हर तरफ बांटी जा रही है, और एक खास सिक्योरिटी का भी इंतज़ाम किया जाता है इस मंथ से रिलेटेड।
0: जी जन्ना बिल्कुल। जैसा कि आप कह रहे हैं कि जुलूस वगैरह की बात अगर की जाए, तो मेरा एक्सपीरियंस रहा है क्वेटा में भी, इस्लामाबाद में भी, इवन के जहाँ पे मैं रहा हूँ पंजाब के इलाके में, वहाँ पे भी मैंने ये चीज़ देखी है कि जो ये सीज़न चल रहा है अब इन दिनों में, जो 7th, 8th, 9th और 10th ऑफ मुहर्रम होते हैं, इनको ख़ास ख़ास क्या कह सकते हैं उसको, कि ख़ास दिनों में इनको इंक्लूड किया जाता है।
1: शुमार किया जाता है
0: तो
1: बिल्कुल।
0: इन इन इन दिनों में जो आपके सिग्नल्स भी हैं वो भी ड्रॉप हो जाते हैं, इवन के
1: जी
0: मतलब बिल्कुल बंद हो जाते हैं,
1: जी
0: सुबह से लेकर शाम तक सिग्नल्स भी इस वजह से बंद कर दिए जाते हैं कि यार सिक्योरिटी थ्रेट्स होते हैं
1: कोई भी मिस हैपनिंग ना हो
0: ना
1: सके।
0: हो जाए।
1: जी
0: बिल्कुल
1: जी जी जी बिल्कुल। तो ये मुहर्रम से रिलेटेड तो हमने कर ली बात, और इसके बाद हम थोड़ा सा चलते हैं पोलो फेस्टिवल के ऊपर।
0: जी बिल्कुल जनाब। तो आप मुझे बताएं कि पोलो फेस्टिवल पाकिस्तान में जैसे चल रहा है, तो ये क्योंकि सीज़न है पोलो फेस्टिवल का भी,
1: जी
0: मानसून के साथ ये भी चलता है, तो
1: जी
0: आप मुझे बताएं कि पोलो फेस्टिवल क्या है, इसका बैकग्राउंड क्या है और ये खेला किस तरह जाता है।
1: जी एहतशाम, ये पोलो फेस्टिवल जो मेनली वहाँ पे होता है पाकिस्तान में, वो नॉर्दर्न एरिया में होता है, शंदूर के नाम से, तो शंदूर पास भी कहते हैं उसको। तो वहाँ पे ये खेला जाता है। आपको पता है कि ज़ाहिर है एक एक घुड़सवार होता है, फिर उसके पास वुडन मैलेट होती है, और वो फिर हर टीम, एक टीम होती है, टीम में 4 प्लेयर्स होते हैं, मतलब जो ओपोनेंट्स की, तो 8 प्लेयर्स होते हैं ऑल टुगेदर। और उसके बाद जितने भी प्लेयर्स हैं, मतलब अगर हम ईच टीम की बात करें, उसके अंदर एक ऑफेंसिव प्लेयर होता है, एक मिडफील्ड प्लेयर होता है, एक टेक्टिकल स्ट्रेटेजिस्ट होता है जिसको आप टीम लीडर भी कह सकते हैं, और एक डिफेंसिव एंकर होता है। और अगर हम देखें ऑफेंसिव प्लेयर को, तो ये मेन बंदा होता है जिसने, जो स्कोरर होता है, जिसने स्कोर करना होता है। और अगर आप मिडफील्ड की बात करें, मिडफील्ड जो होता है वो बैक कर रहा होता है ऑफेंसिव प्लेयर को, मतलब ये उसके साथ उसको थोड़ा सा बैक करता है, उसको पुश करता है, उसको
0: बैक
1: मतलब
0: सपोर्ट देता है
1: बैक
0: कि यार
1: सपोर्ट देता है
0: वो
1: बिल्कुल
0: हेल्प करे अपने गोल करने में।
1: जी। उसके बाद जो टेक्टिकल स्ट्रेटेजिस्ट होता है, वो मेन करेक्टर है इस सारे गेम में, वो उसको टीम लीडर भी कहते हैं। उसका ये रोल होता है कि वो इन बिटवीन खेल रहा होता है, मतलब डिफेंस और ऑफेंस दोनों के, मतलब वो दोनों तरफ को गाइड कर रहा होता है, डायरेक्शंस दे रहा होता है, मतलब तो इस तरह से टीम लीडर इस तरह से वर्क करता है। उसके बाद डिफेंसिव एंकर आ जाता है, जिसको हम गोलकीपर कह सकते हैं आम जुबान में। तो वो गोलकीपर का ये काम होता है कि उसने जो सामने से ओपोनेंट का जो ऑफेंसिव प्लेयर आ रहा होता है, उसके गोल्स उसने रोकने होते हैं। तो ये मेनली हमारा पोलो फेस्टिवल में आ जाता है।
0: अगर
1: उसके जी
0: जी जी जनाब
1: उसके बाद अगर हम देखें, आजकल पाकिस्तान में मानसून सीजन चल रहा है, तो मानसून से रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन आपके पास होगी, आप बताएं थोड़ा सा।
0: हाँ बिल्कुल जनाब, जैसा कि आप आपको भी पता है और मुझे भी और सारे पाकिस्तानियों को भी पता है कि यार जो मानसून का सीज़न होता है वो पीक रेनी सीज़न होता है।
1: जी
0: इस सीज़न में क्लाउड बर्स्ट होते हैं, ठीक है, फ्लडिंग होती है, और ये नहीं है कि एक साल हो गया तो दूसरे साल नहीं, मतलब रेगुलरली हम ये देखें कि पाकिस्तान में होता ही है मानसून सीज़न, एक प्रॉपर सीज़न आता है, रेनी सीज़न होता है, क्लाउड बस्टिंग के बाद काफ़ी काफ़ी जगह पे फ्लड्स आते हैं, जैसा कि हम देखें कि लास्ट ईयर लाहौर में पार्क्यू सिटी में
1: जी जी जी
0: दो दरियाए रावी था, क्योंकि वहाँ का जो जिस जगह पे पार्क्यू सिटी बनी हुई है वो उसकी दरियाए रावी की जगह थी,
1: जी
0: तो उस जगह को जब वो सूख गई तो उसके ऊपर उन्होंने मतलब एक
1: कंस्ट्रक्शन
0: सोसाइटी
1: शुरू
0: बना
1: कर दी।
0: दी
1: जी बिल्कुल
0: कि यार दोबारा तो यहाँ पे पानी आएगा नहीं, लेकिन जिस टाइम पे मानसून का सीज़न आया दोबारा पानी आया तो काफ़ी लोग बेघर हो गए।
1: जी,
0: तो अगर
1: पानी
0: हम
1: तो अपना रास्ता फिर खुद बनाता है।
0: बिल्कुल बिल्कुल तो ये

0: अगर देखा जाए तो मतलब मानसून का सीज़न एक मतलब एक तरीके से देखा जाए तो अच्छा सीज़न भी होता है, क्योंकि बारिशें हो रही होती हैं. आपको पता है
1: जी
0: कि
1: जी
0: बारिश किसको नहीं पसंद, लेकिन दूसरी तरफ देखा जाए तो डेंजरस भी बड़ा होता है.
1: जी इसको आप कैसे कंपैरिजन करते हैं, न्यूजीलैंड में जो बारिशें होती हैं और जो पाकिस्तान में बारिशें होती हैं?
0: जनाब मैंने देखा है फ्लड्स तो यहाँ पे भी आते हैं,
1: जी
0: ये नहीं है कि यहाँ पे फ्लड्स नहीं आते, क्योंकि अगर आप न्यूज़ देखें तो यहाँ पे भी फ्लड्स आते हैं. ठीक है, रिसेंट भी फ्लड्स आए हैं.
1: जी
0: जैसा कि आप देखा है, आप देखें, मैं न्यूज़ देख रहा था क्राइस्टचर्च में अराउंड 1.5 मंथ अगो,
1: जी
0: तो ये वहाँ पे आया था
1: जी
0: फ्लड आया था. उसके अलावा वेलिंगटन में आप देख लें, ऑकलैंड में देख लें,
1: जी
0: ठीक है, तो फ्लड्स यहाँ पे भी आते हैं. लेकिन यहाँ पे आपको जिस टाइम पे फ्लड आने वाला होता है या कोई भी इस तरह का थ्रेट होता है, तो वो आपको फ़ोन पे थ्रेट भेज देते हैं कि यार
1: जी
0: इस तरह का जो
1: एग्जैक्टली
0: है आने वाला है, तो आप लोग होशियार हैं. लेकिन
1: एक एक
0: पाकिस्तान
1: एक तरह
0: में
1: की जो एडवाइजरी जारी कर
0: एडवाइजरी
1: दे.
0: दे देते हैं, लेकिन पाकिस्तान में इस तरह की चीज़ नहीं है, जिसकी वजह से काफ़ी लोग बेघर हो जाते हैं, काफ़ी लोगों की जानें चली जाती हैं. तो ये
1: जी
0: चीज़ यहाँ पे भी है, लेकिन यहाँ पे अच्छे तरीके में उसको यूज़ कर लेते हैं.
1: जी तो मेरा ख्याल है कि इस चीज़ से निमटने के लिए अगर आप देखें तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को थोड़ा सा काम करना चाहिए. डेफिनेटली
0: बिल्कुल
1: वो कर भी रहे हैं,
0: बिल्कुल
1: और ये है कि इससे इसके अंदर वो एडवाइजरी जारी करें. कुछ लोग जो है वो आउट ऑफ सिटी होते हैं, आपको पता है नॉर्दर्न एरियाज़ में गए होते हैं, या कहीं पे भी आप अगर कंट्री में
0: जी,
1: ट्रैवल कर रहे हैं तो, और पीछे से इस तरह की सिचुएशन बन जाए तो ये एक बहुत बड़ा मसला है.
0: जिस तरह आप साउदर्न एरियाज में की बात कर रहे हैं, नॉर्दर्न की सॉरी, तो वहाँ पे जब आप जाते हैं तो इस सीज़न में वहाँ पे लैंडस्लाइडिंग भी बहुत होती है, जिसकी वजह से
1: जी
0: रोड्स बंद हो जाते हैं.
1: जी अच्छा, इसके अलावा एक एप्रिकॉट सीजन भी आता है पाकिस्तान में.
0: जी बिल्कुल, जो आजकल चल रहा है जनाब, जैसे कि आपको पता है कि एप्रिकॉट सीज़न है, तो आप मुझे बताएं कि इसके बारे में आपको क्या पता है, या आप क्या इसके बारे में कहेंगे?
1: एप्रिकॉट सीजन, ये एक्चुअली आपको पता है कि ये जो होता है ये मेनली जो एप्रिकॉट है वो हुंजा की एक आप प्रोडक्ट कह लें
0: जी
1: या आप वहाँ का फल कह लें, वो वहाँ का फल है. तो ये हुंजा में, अगर फॉर एग्जांपल हम करीमाबाद की बात करें, तो ये एक स्पेशल इसका सीज़न स्टार्ट होता है इन दिनों में, जहाँ पे मानसून भी चल रहा है बाकी पाकिस्तान में. और उसके अलावा ये है कि जैसे ही थोड़ी सी वहाँ पे बर्फ़ ख़त्म होती है, मतलब,
0: जी
1: और क्योंकि हुंजा की धूप इस तरह की है वो थोड़ी सी जिस्म को जला देने वाली, तो उधर
0: जी
1: अगर टेम्परेचर 25 से 30 पे भी जाता है तो उस सीज़न का, उस धूप का हुंजा के लोग या उस एरिया के लोग जो हैं वो बहुत फ़ायदा उठाते हैं, और एप्रिकॉट जो है वो अपनी छतों पे उनको पकाते हैं उस धूप के अंदर. तो ये एक बड़ी अच्छी चीज़ है, और आपको पता है पूरे पूरे वर्ल्ड में जाती है फिर वहाँ से.
0: बिल्कुल बिल्कुल इसी तरह है जनाब.
1: जी तो उसके अलावा आप मुझे थोड़ा सा क्रिकेट के बारे में बताएं.
0: जनाब क्रिकेट के बारे में अगर अभी हम रिसेंट आने वाले उसके बारे में देखें, अपकमिंग इवेंट्स के बारे में, तो पाकिस्तान की टीम ने ट्रैवल करना है वेस्ट इंडीज़
1: जी
0: 2 टेस्ट के लिए,
1: जी
0: तो होपफुली हम अच्छा रिजल्ट के लिए ही वेट कर रहे हैं कि अच्छा रिजल्ट
1: जी
0: आएगा.
1: जी जी होप
0: नहीं तो
1: फॉर द
0: अगर लास्ट
1: बेस्ट.
0: हमें देखें तो पाकिस्तान का जो लास्ट टेस्ट हुआ था उसमें आई थिंक उनको शिकस्त हुई थी,
1: जी
0: वो मतलब डिफीट हुए थे. तो होप सो के यार शान मसूद हमारे कैप्टन हैं, तो होपफुली के यार वो अच्छा इस दफ़ा प्ले करेंगे. और
1: जी
0: मतलब कि सिर्फ एक प्लेयर ही पूरी टीम को नहीं चलाता, ऑब्वियस सी बात है,
1: जी
0: और ख़ास कर टेस्ट क्रिकेट अगर देखा जाए तो वो 4 दिनों का 5 दिनों का होता है, तो उसमें अगर हम देखें कि बड़े सब्र के साथ बड़े पेशेंस रख के जो है ना प्लेयर को बैटिंग भी करनी पड़ती है और बॉलिंग भी,
1: जी
0: क्या
1: जी
0: कहते हैं आप?
1: जी बिल्कुल. पेशेंस तो फिर आपको पता है कि रखनी पड़ती है, पेशेंस ना हो तो कुछ भी नहीं हो सकता. और यही यही चीज़ है, अगर आप टेस्ट की बात करें और वनडे या T20 की बात करें, तो वही चीज़ एक टेस्ट क्रिकेट को बाकी क्रिकेट से डिफरेंट करती है.
0: जी
1: और टेस्ट में तो ये है कि आपको पूरे तहम्मुल से खेलना पड़ता है, आपको पता है कि आपने 5 दिन प्ले करना है, तो जितना मैक्सिमम आप जो है वो खेल सकें.
0: जी
1: तो इसके बाद अब हम एक ब्रेक पे चलेंगे, और ब्रेक में ये है कि हम आपके लिए एक सॉन्ग प्ले करेंगे, तो ये आप ज़रा थोड़ा सा एंजॉय कर लें.

हासिल करने के लिए हमने बहुत कुर्बानी की है। तमाम मिलत हिम्मत और सबर के साथ काम करती रही। हमारी ये मुसीबत इंशाअल्लाह बहुत जल्द खत्म हो जाए।

0: जी एहतशाम
1: जी जनाब।
0: मेरा ख्याल है कि ये सॉन्ग जो है वो बहुत ही खास सॉन्ग है पाकिस्तान से रिलेटेड, और
1: बिल्कुल
0: स्पेशली अगर हम सिंगर की बात करें आतिफ असलम, तो क्या ही सिंगर प्रोड्यूस किया
1: बिल्कुल,
0: पाकिस्तान ने।
1: मैं कहता हूँ कि सदियों में शायद ऐसा सिंगर आता है
0: जी बिल्कुल।
1: जिसको सुनते सुनते मैं खुद बड़ा हो गया हूँ, लेकिन इसका अभी तक भी अगर आप सॉन्ग सुने तो यार वही तर्ज है, वही आवाज़ है इसकी।
0: जी क्वालिटी की अगर सॉन्ग्स की बात की जाए तो बहुत ही मेरा ख्याल है ज़बरदस्त। पाकिस्तान के बहुत सारे सिंगर्स हैं, बड़े सिंगर्स, आबदा परवीन की अगर आप बात कर लें, राहत
1: लेजेंड
0: फ़तेह अली खान की बात कर लें, अगर
1: लेजेंड
0: पुरानी हम बात कर लें कवालों की, तो नुसरत साहब आपको पता है कि वो तो फिर पाकिस्तान के लेजेंड्स में से हैं,
1: दुनिया मानती है जिनको।
0: दुनिया मानती है। तो कमिंग बैक टू द शो, हम
1: यस
0: जैसे क्रिकेट पे बात कर रहे थे, तो थोड़ा सा मुझे बताएं कि जो पाकिस्तान की अब टेस्ट टीम है, इसके बारे में क्या रिव्यूज़ हैं आपके, कैसी टीम है ये इस टाइम पाकिस्तान की।
1: जनाब, अगर मैं बात करूं पाकिस्तानी क्रिकेट टीम टेस्ट खास कर के बारे में, तो टेस्ट में मेरे ख्याल में जनाब पाकिस्तान को नए प्लेयर्स लाने की ज़रूरत है,
0: जी
1: क्योंकि अगर हम देखें कि लास्ट अगर हम जितने भी मैचेस देखें तो यार एक कंसिस्टेंट परफॉर्मर हमें कोई नज़र नहीं आता,
0: जी
1: ना ही बॉलिंग में, बल्कि हमारे पास है लेकिन उनको ये लोग यूज़ नहीं करते। पाकिस्तानी टीम
0: जी
1: जो इनकी सबसे बड़ी बैक लेगिंग है कि यार ये यूज़ नहीं करते।
0: जी
1: और बैटिंग के बारे में बात की जाए तो मैंने कोई इतना कंसिस्टेंट परफॉर्मर नहीं देखा बैटिंग में,
0: जी
1: तो मेरे ख्याल में इनको नए टैलेंट लाने की ज़रूरत है।
0: देखो कुछ प्लेयर्स ऐसे हैं कि जो एक मैच में परफॉर्म कर देंगे, दो में परफॉर्म कर देंगे, लेकिन अगले काफी मैचेस उनके बस फिर ऐसे ही जाते हैं, फिर वो कोई खास परफॉर्म भी नहीं कर सकते।
1: मेरे ख्याल में असल में जो मेरी मतलब सब पाकिस्तानियों की या सब लोगों की जो सिर्फ एक ही निगाह है वो सिर्फ बाबर पे है मेरे
0: जी
1: समेत, क्योंकि उस जैसा क्वालिटी बैटर तो मतलब पाकिस्तान ने इससे पहले, मेरा नहीं ख्याल कि यार इतना क्वालिटी का बैटर पाकिस्तान ने
0: जी
1: शायद मतलब थे, लेकिन वो बहुत पुराने थे।
0: जी
1: इस टाइम के अगर आप देखें तो यार बाबर टॉप पे है।
0: क्योंकि 2011 से ले के अभी रीसेंट इयर्स तक बहुत सारे ऐसे फ्लॉज हैं पाकिस्तान की क्रिकेट टीम में, अगर हम उससे पीछे चले जाएं तो बहुत अच्छे बैट्समैन थे
1: बिल्कुल
0: हमारे पास और बहुत अच्छा चल रहा था सब, लेकिन अभी आजकल के टाइम
1: जावेद
0: में
1: मियां दाद थे, अब
0: जावेद मियांदाद जी
1: इंजमामुल हक थे, मिसबाह हक थे, यूनुस खान थे, अगर आप देखें इनको मतलब
0: जी
1: लेजेंड से गुजरे। हमारे एक बहुत बड़े लेजेंड इमरान खान थे,
0: जी बिल्कुल,
1: तो
0: इमरान खान
1: मतलब
0: दी
1: लास्ट
0: ग्रेट
1: वर्ल्ड कप तो उन्होंने ही हमें जिताया था,
0: जी,
1: उसके बाद
0: वन एंड
1: तो
0: ओनली वर्ल्ड कप जी
1: तो उसके बाद हमारे हाथ में कोई वर्ल्ड कप नहीं आया।
0: जी
1: तो होपफुली कि यार नेक्स्ट ओडीआई जो वर्ल्ड कप आ रहा है उसमें हमारे जो
0: अच्छी टीम के साथ हम आगे आए हैं।
1: शाहीन अफरीदी हैं वो अच्छा एक मतलब ओवरऑल टीम के परफॉर्मेंस लेके आए। तो अगर
0: जी
1: अब अगर हम बात कर ही रहे हैं तो जनाब अगर हम बात करें कि न्यूजीलैंड की, मैं क्रिकेट टीम देख रहा था, इनका अभी रिसेंट टेस्ट मैच हुआ है,
0: जी
1: थ्री थ्री टेस्ट मैच इनके हुए हैं, थ्री की सीरीज़ हुई है और 2-1 न्यूजीलैंड ने विन किया है,
0: इंग्लैंड के
1: सो
0: अगेंस्ट आई
1: इंग्लैंड के
0: गेस।
1: अगेंस्ट।
0: जी
1: तो यार क्या क्या परफॉर्मेंस थी यार, मैं मतलब देख के मज़ा आया यार कि
0: जी
1: बहुत टाइम बाद, हालांकि न्यूजीलैंड की टीम बड़ी अच्छी है
0: जी
1: ओवरऑल देखा जाए तो बड़ी अच्छी टीम है,
0: जी
1: लेकिन बहुत टाइम बाद एक टेस्ट मैच को देखने का मज़ा आया है।
0: और वैसे भी अगर देखा जाए जो लास्ट वर्ल्ड कप हुआ था इंग्लैंड वर्सेस न्यूजीलैंड, तो एक बैड लक था न्यूजीलैंड के
1: बिल्कुल
0: लिए, तो न्यूजीलैंड तो आई गेस अब इंग्लैंड को अपना राइवल मानता है उस टेस्ट के बाद से।
1: बिल्कुल इसी तरह है,
0: जी तो अनइंटेंशनली था, लेकिन वो मतलब होना नहीं चाहिए।
1: अनइंटेंशनली ही होता है, लेकिन
0: जी
1: वो आगे जाके फिर एक राइवलरी बन जाती है।
0: जी जी तो ये यही चीज़ है ना, मतलब आप अगर बात करें यहाँ की क्रिकेट टीम और हमारी क्रिकेट टीम का, तो वो बहुत बड़ा डिफरेंस
1: बहुत
0: है।
1: डिफरेंस है, बहुत बड़ा डिफरेंस है
0: नए
1: बिल्कुल।
0: नए प्लेयर्स को अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं यहाँ पे, अगर एक नहीं परफॉर्म कर रहा तो वो उसको अपनी ईगो नहीं समझता, टीम से बाहर होना 4 मैचेस के लिए, 10 मैचेस के लिए, तो ये एक अच्छी चीज़ है।
1: जी बिल्कुल,
0: अच्छा इसके अलावा मुझे थोड़ा सा ये बताएं, आजकल पाकिस्तानी स्टूडेंट्स, अगर हम ओवरऑल भी स्टूडेंट्स की बात
1: जी
0: करें, तो न्यूजीलैंड में छुट्टियां चल रही थी क्योंकि सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो ऑलमोस्ट घरों से अभी वापस आए हैं,
1: जी
0: तो क्या देखते हैं आप आगे, कुछ कुछ बेहतरी आएगी पाकिस्तानी स्टूडेंट्स के लिए यहाँ पे, क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं।
1: जनाब अगर देखा जाए तो जहाँ

0: पे अभी हम रह रहे हैं डेनिंगटन में, तो यहाँ की जो यूनिवर्सिटी ऑफ ओटागो है, मेरे ख्याल में जो बिज़नेस स्कूल है वो इससे अच्छा बिज़नेस स्कूल, क्योंकि मैंने रिसर्च की है.
1: जी
0: मैं ख़ुद BS अकाउंटिंग एंड फाइनेंस के बाद जब मैं मास्टर्स के लिए देख रहा था, तो मुझे मास्टर्स बिज़नेस में करना था, तो मैं देख रहा था कि यार ओटागो की जो यूनिवर्सिटी है टॉप लेवल यूनिवर्सिटी है.
1: जी
0: लेकिन पाकिस्तान में मसला ये है कि लोग, ज़्यादातर लोगों को न्यूज़ीलैंड की इस यूनिवर्सिटी के बारे में और ना न्यूज़ीलैंड के बारे में इवन के ज़्यादातर पता है. वो सिर्फ न्यूज़ीलैंड को जानते हैं कि न्यूज़ीलैंड की क्रिकेट टीम है, बस दैट्स ऑल. उसके
1: जी
0: अलावा उनको न्यूज़ीलैंड के बारे में इतना कुछ ख़ास पता नहीं है.
1: जी
0: लेकिन यहाँ पर जब मैं आया, तो यहाँ पर मैंने देखा कि यार मतलब वर्ल्ड वाइड यहाँ पर लोग आए हुए हैं यूनिवर्सिटी
1: जी
0: में पढ़ने के लिए. क्या कहते हैं आप?
1: पाकिस्तानी जो स्टूडेंट हैं खास तौर पे बहुत कम देखने को मिलते हैं।
0: जी बिल्कुल.
1: मेरा ख्याल है पाकिस्तान में कोई एक ऐसा स्पेसिफिक पाथवे नहीं है जिससे थोड़ा सा गाइड किया जा सके स्टूडेंट्स को यहाँ पे आने के लिए न्यूजीलैंड में।
0: जी बिल्कुल
1: क्या कहते हैं आप?
0: ऐसा होना चाहिए. मतलब लेकिन मैं वही बात कर रहा हूँ कि यार वहाँ पे लोगों को ज़्यादातर पता ही नहीं है कि यार, सिर्फ वहाँ पे लोग जानते हैं कि यार न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम है, दैट्स ऑल.
1: जी
0: मतलब
1: जी
0: स्टडीज़ के लिए वो जाते हैं, UK चले जाते हैं, यूनाइटेड स्टेट्स का वो करते हैं, कनाडा का करते हैं, लेकिन न्यूजीलैंड का के बारे में ना उन्होंने वो रिसर्च करते हैं, ना उनको पता होता है.
1: जी तो यही हम यहाँ पे अपना शो एंड करेंगे, और इसके अलावा ये है कि हम इसी टॉपिक को नेक्स्ट एपिसोड में लेके चलेंगे पाकिस्तानी स्टूडेंट्स से रिलेटेड।
0: यस
1: तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।
0: यू हैव बिन लिसनिंग टू इंडस्ट्री ओटागो ऑन OARFM. थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस एज वी कनेक्ट पाकिस्तान एंड ओटागो, टू लैंड्स वन वॉइस.
1: लिसन बैक ऑन स्पॉटिफाई, एप्पल पॉडकास्ट, oar.org.nz. अंटिल नेक्स्ट टाइम, खुदा हाफिज एंड काकिते आनो।
2: Famed in Eden, access to the airwaves.